एक ओहकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लय त्याहे। हरे अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याही है जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताहे सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल जरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक केसां सुवासां संग निभाया तिन्हां समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका।

फते परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा सत्संग जीओ महाराज साहब जी की अपार बख्शिश वरत रही है। हर रोज की तरह संध्या दे दीवान सजे ने, सजे दीवाना च हाजरियां भर के अपने जीवन दे कीमती समय नू सफल बना रहे हैं।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु

हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होय सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला

गुरुदेवस्पति जेह प्रसाद सती है अमृत खाए तिस ठाकुर कह रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंध तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे। जेह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याहे सदा मणि अंदर। जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना। जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यामन जोग।

होए। आप सदकियां सब सात है आपे जाने अपनी मित गात जिसकी सरिस सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक जो तिस भाव है सो

सब लोए सब तीवज पाए स्थान बार न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए केम सांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वत सिद्ध विद्या तब जोग प्राप्त ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल देवदास सुंदर चतुर तत्का विता सुंदर सी एक दृष्टेता

अनाहत जुग जुग एको वे सेका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारिक भंडारी गलाए दीबान।

ना कथने जाहे न ओहे मरहे न ठगे जाहे जिनके राम वसे मन माहे तथै भगत वसे के लोह करे आनंद सच्चा मन सोए।

त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, भूत है, अपर्ण है, अगंज है, पंज है, चूज है, चंज है, अमीक है, अरबीक है, तंध बंध है, निर्भूज है, सूज है, काल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसरीक है, निर्लम्ब है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, अपर्म है, जीत है, पीत है, अभा है, अगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयाद शंदर मोसर माने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अभेवे नमो काल काले नम नमो सर पाले नमो सर्व गौणे नमो सर पौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान भाने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो राध राधे नमो भान भाने नमो बाध बाधे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंग मनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वयं ब्रह्म रूपे नमो जोग जोगे स्वयं ब्रह्म सिद्धे नमो राज राजे स्वयं ब्रह्म वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगे स्वयं ब्रह्म जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अभ्रेत देव सुतर्मे

ब्रीते नमो रोग रोगे नमो सोग सोगे नमो सर्व रोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगेतरभंगीयरंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजय समसं प्रसज्जे कृपालं सर्वे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा हृत्सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत घर में अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल सर्वंग अलख करवंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग प्राणंग सर्वंग भूता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेमंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल शांत द्वाप्रसाद आद्रुपनाद मूर्ता जोन पुरख पार सर्मांतरमान देव भेवाद उदार सर्पालक

देशर न पे जागरूप रेख न राग जतरद तरद सब सब पहलो अनुराग नाम काम विहीन भगतामु न जाए सर्वान सर्वत्र मान सदय मान ताय एक मूर्त अनेक दर्शन की नुर्भ अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक देव बिना जाने जेबे दौर गेब रूप रंग ना जात पासो जानी के जेब तात्मात्मा जात जग जनमरण विहीन चकर बकर फिर चतर चक मानी पुरतीन लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जह जाप आ देवनाद मूर्त आप्यो सब जथाप परम रूप रे पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सब रचियो स्वयंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहता भूत रख भेस अंगरागन रंग जाके चा जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख भूत गर्भ गंजन सर्वनाद्रुप सूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्व पायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वंता सर्वतयन पे एक सर्व शास्त्र ना जान जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत भागत नेत कोण से मृत पुराण शास्त्र न आवह बहुचित मद भार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदाहर महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निजन अनास आजान बाहु शाहान शाहो राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्रबालान बारंकार कारान काल अनुभूदंग आपा अभंग गदमिता बार गुणगन उधार मुनगन प्रणाम निर्भय काम अद्भुत प्रचंड विद गदा खंडाल कर्म आदस्य धर्म सर्वा प्रणाढ़।

बंध भक्त भ्रक्त नाश प्रकाश नचंत सुनंत अलख दिख लेख भेख टाह अगाह असंभ अगम अनिल अनाद अनित सुनत अजात अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तरानं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसाबल छंद त्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते नरसाकं सरीग मितो मिघ सदैव प्रवाह है अजाय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसुर सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग कुशल चराग कामल करीम के राज कर हिमे के रोजी दहंद के राज कर हिंद करीमल कमाल कुशल जमाल करीमल खराज गरीबल निवाज हरीफुल शिकन है रासिल पिकन है कलंकंग प्रनाश है समस्त निवास है गंजुल गरीम रजाय कर हिम है समस्तुल सुबह है के साहिब ग्राह है के नरकंग प्रनाश है बहसुल निवास है के सरबुल गबन है महसुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीश है समस्तुल अदीस है आदेशुल अलेख है मेसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल के जुरत जमाल का चलंग प्रगास के मितो सुबास के अजब स्वरूप के मितो विभूत है के मितो प्रसाह के आत्म प्रवाह के चलंग अनंग के मितो अभंग मदभार शांत अथवा प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम हर भर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड भर नर अमंड अनुभव नाश मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल मंड दिशुस अपन जल थल महन दिशुस व्यंत अनुभव नाथ तर तुरास आजान बाहु शाह एक सदाहु ओंकार याद कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरबर काल घर घर प्रणाम चित्र नाम अंशज गात अजना बात अंश अंजगात अंधरंज बात अं टुट मटार अंठट अबार आठीठ धर्म अतठीठ कर्म अनभरण आनंदाता महंधर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभार है तृतके तरण है जाके करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश है सर्वनाश है।

वह करे तमाय रहाउ। गुसा कटिया वार वार पीसन पीसा पाए, अग्नि से ती जालियां भस्म से ती डल जाऊ। पी तेरी कीमत ना पवे हो के बड़े आखान आऊ। पंखी होए कै जे पवा सह असमानी जाओ, नदरी किसे ना आवाओ ना किसे पिया ना खाओ। पी तेरी कीमत ना पवे हो के बड़े आखान आऊ।

मन में चले विकार रहाउ। श्री राग महला पहला, कुंगू की काया रतना की ललता, अगर वाह तन सास, आठ साठ तीर्थ का मुगटिका, तेत काट मत विगास। ओतमति सालाहन सच नाम गुण तास, बाबा होर मत होर होर, जे सो वेर कमाई कूड़े कूड़ा जोर रहाउ। पूज लगे पी राखी है, सा मिले संसार, नाउ सदाए अपना हो वै सिद्ध सुमार, जा पद लेखे ना पवे सबा पूज खुवार। जिन को सतगुर थापिया तिन मेड़ न सके कोए, उन्हां अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाउ पूजिया नाउ मनिया, खंड सदा सज सोए, खेहू खेह रलाइय ता जियो के होए। जलिया सब सियाण पा उठी चलिया रोए, नानक नाम बसारे है दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

काल बिन नाम बादी सब काल रहाउ। खेती वणज नाम कियोट पापन बीज की पोट, काम क्रोध जी मैं चोट नाम विसार चले मन खोट। सच गुर के साची सीख तन मन शीतल साच परीख, जल पुरायन रास कमल परीख शब्द रते मीठे रस ईख। हुक्म संजोगी गर्दस द्वार पंच बसे मिल जोत अपार, आप है आपे बनजार नानक नाम स्वर्ण हार। गौड़ी महला पहला।

नाम हृदय अमृत मुख नाम नरहर नाम नरहर निकाम रहाओ सज अव सज जाए मंत उपजय मन माए समाए गुरम मुक्तो बंधन पाए शब्द विचार छुटे हर नाए तबर पंखे बो निसबास सुख दुखिया मन मोह विनाश साज बहाग तकिया गास दर तावे करम लिखियास नाम संजोगी गोयल थाट काम क्रोध फुट बिख माट बिन वखर सुनो कर हाट गुरमिल खुल हे बजर कपाट सद मिले पूर्व संजोग सत्सर

কোয়ে পুরে করতে বুঝে জানে কোয়ে রাহাও অসন্ত নাড়ি কদে না বুঝে কতনি করে তে মায়া নাল লুজে অন্ধ জ্ঞানী কদে না সিজে এস যুগ মে রাম নাম নিস্তারা বিরলা কো পায়ে গুর শব্দে বিচারা आप तरह सगले कोल उधारा इस कल युग में कर्म धर्म न कोई कलिगा जन्म चंडाल के कार होई नानक नाम बिना गुम मुक्त न होई गौड़ी महला तीजा गुआरे री सच्चा मृसता पाद साहो मन सच राते हर विप्रवाहो सच महल सच नाम समाहो सुन मन मेरे शब्द विचार राम जप पव जल उतरो पार रहाओ परमे आवे परमे जाए हो जाग जन्मे दूजे पाए मन मुख न चेत आवे जाए आप भुलग प्रभ अपलाया एहो जीव डाणी चाकरी लाया मां दुख हटे बरता जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिल लाए को नाम चेत विच भरम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौनद पाए गुड़ी गुवारे री महला तीजा जिन्ना गुरमुक्त आया तिन पुछ जाए गुरसेवा ते मन पति आए सतनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सूझी पाए हर हर नाम जप मेर पाई गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई राव आप छाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गाव मधुत मोए सहज सहज समाव सोए दुज पाए ना सेवे जाए हमें माया महा दुख खाए पुत कुटाम ग्रे मोया माए मन मुख आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंदन भगत गुर शब्द होए गुरु बिरला बुझे कोए नानक नाम समाव सोए गोड़ी गौरे रिमला तीजा गुरसेवा जुग चरे होए पूरा जन कर कमावे कोई कुट नाम तन हर तोट न होई एते सदा सुख दरसो बा होई ये मन मेरे परम न की जय गुरमुख सेवा अमृत रस पीजे रहाओ सतगुर सेवे से महापुरख संसारे आपदर कुल सगले निस्तारे हर का नाम रखे उतारे नम्रत पाव जल उतरे पारे सदगुरु सेवी सदा मन दासा हम मार कमल प्रकाशा नंदन बाजे निज गुरवासा नाम रते कर माहे उदासा सदगुरु सेवे तिनकी सच्ची बाणी जुग जुग भगती आगव काणी अंधन जपे हर सारंग पाणी नानक नाम रते नेके निर्वाणी गौड़ी गुवारे री महला तीजा सतगुरु मिले बुढ़पाग संजोग हृदय नाम रित हर स्पोग गुरमुख प्राणी नाम हर त्याय जन्म जीत ला नाम पाए राव ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा ते किने विरले चख डीटा कर्म कौन बो करे चार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांध्यो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गुड़ी बरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मद पानी नाही जैसे धरती मद पानी पर गास बैन पगा बरसत फिराही बाबा तू ऐसे भरम चुकाही जो कुछ करत है सोई कोई है रे तैसे जाहे समाई रहाव स्त्री पुरुष होए के क्या कर्म कमाही नाना रूप सदा है तेरे तो जी माहे समाही जित जन भूल परे से जा पाया ता भूल नाही जग कारज सोई पर जाने जो गुरु शब्द समाही तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई नानक तत् सुन मिलया पुनरप जन्म ना आई गुड़ी बैरागण महला तीजा सब जो कल बस है बादा दूजे पाए हमें कर्म कमाव दे मनमुख मिले सजाए मेरे मन गुरचरणी चित लाए गुरमुख नाम निदान लै दरगल छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन हटिया बह जाए गुर का शब्द न चीनियो फिर पर जोनी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए अंदर भगती रत्या हर नाम सुख समाए मन शब्द मेरे प्रतीत होए हमें ताजे विकार
हम तज विकार जिन्हां ने करमी पाई है न हर नाम भगत भंडार गोड़ी बैरागण महला तीजा पेयड़े दिन चार है हर हर लिख पाया सोभा बंती नार है गुरमुख गुण गाया पिप गुड़े गुण समल सौरे वास पाया गुरमुख सहज समाड़िया हर हर मन पाया ससुर पेये पेर बस को कित बिद पाइये आप निरन आप निरंजन लख है आपे मेला ये राहो आपे ही प्राप्त है मत हर नाम त्याई है बड़भाग सतगुर मिले मुख अमृत पाई है हमे दुबदा बिनस जाए सज सुख समाई है सब आपे आप वरत दया पे ना लाई है मन मुख गर बना पायो अज्ञान आने सतगुर सेवा न फिरे न करे फिर पछताने गर्भ जो निवास पाए दे गर्भ गल जाने मेरे करते हुए भाव दा मन मुख प्रमाणे मेरे हर प्रभ लेख लिखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम त्याया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर ना बैर बंद बबीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गोड़ी बरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत विचारा मत मिलीन प्रगट पाई जब ना मुरारा शिव सकत मिटाइया चुका दियारा तुर मस्तक जिन कहो लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाइया संत जनो जिस दे कहो जीवा हर बिन चसा न जीवती गुर मिलो अरस पीवा रहाओ हो हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सुगुर हम कीनी गुणदाता हर राय हम अवगणियारे पापी पात्र डूबदे गुरमुख हरता हरे तू गुणदाता निर्मला हम अवगणियारे हर सनाक तेरा हकलिख मुण मुगद निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कार सोहिला गाया हर दयाता हर प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंग धूड़ तिन चिन्ह सतगुर पाया।

0: तब हम सहज सुई ज्यो लो पोट उठाई चलियो तो लो डान परे पोट डार गुरपुरा मिलिया तो नानक निरपय। गौड़ी महला पंजवा पवन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मन गबिंदे आग्यो रहो। मन अभिमान दौ समान मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरखना आपत दुखा रंग ठाकर लाग्यो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्ट आग्यो निरपो पे संत परम डार्यो पूर्ण सर्व आग्यो। जो किश करते कारण कीनो मन बुरा न लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानके और त्योहारी परियो आयो सर नाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो। गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाले रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहो। लाथी पूग तिशना सब लाथी चिंता सगल बिथारी करे मस्तक गुरपुरी धार्यो मन जीतू जग सारी तिपता काई रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चुके अखुट खजाना सतगुरु दिया तोट नहीं रे मुके। चर जे एक सुनो रे भाई गुरे ऐसी बूझ बजाई लाहे पड़दा ठाकर ज्यो भेट्यो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एह चंबियो सो जाने जिन चाख्या कहो नानक सच पई बिगासा गुर निदान हृदय लै राख्या। गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोग माया कै मंडल गिर गिर परते धरनी रहो। सात सिमरत वेद बचारे महापुरख ने कहया बिन हरे भजन नहीं निस्तारा सुख न किन्हू लहया। तीन पण भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नहीं लहरे बिन हर भगत कहां तिथ पावे फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन पूर्ण होत न कामा जलतो जलतो कबू न बूजत सगल बिथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता ए सार सुख पूरा साध संगते जन मरण निवारे नानक जन की तूरा। गौड़ी माला महला पंजवा मोको ए बिद को समझावे करता हुए जनावे रहो जानत किश अनजानत किश इने कमानो जब तप कछु न सादा दै दिस लै ए मन दौरियो दोहरायो कवन कर्म कर बादा मन तन तन भूम का ठाकर हऊ इसका ए मेरा परमोह किशे सुजस नाही ए पैखर पे पैरा तब हे कहां कमावन परया जब हे कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किशे आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन हे रचन रचाया कहो नन करनहार है आपे सतगुरु परम चुकाया। गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवरे क्रिया बिरथे जप तप संजम कर्म कमाने एह उरे मुछे रहो। बरत नेम संजम मैं रहता तिनका याद न पाया आगे चलन अवर है पाई ऊहा काम न आया। तीर्थ नाए और तरनी परमता आगे ठौर न पावे ऊहा काम न आवे ए बिद ओ लोगण ही पते आवे। चतुर्वेद मुख बचनी उचर आगे महल न पाईया बूझे नहीं एक सुधाकर ओ सगली चाक चखाइया। नानक कह तू ए बेचारा जो कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो और नाम त्यावो त्यागो मनो गमानी। गौड़ी महला गौड़ी माला पंजमा मादियो हर हरे हरे मुख कहिया हम ते कछु ना होवे स्वामी जो राख्यो त्यों रही आ रहो। क्या किश करे के करन हारा क्या इस हाथ बिचारी जे तुम लावो तित ही लागा पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्व के दाते एक रूप लिव लावो नानकी बनंती हर पै अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजमा एक ओंकारी सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो कोट जना कर सेव लगाया जियो भगत विशाल तेरे बिरद रखाया जियो पूरन सबनी जाई जियो ज्यो पेखा क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो संता दासी सेवा चरनी जियो ए जियो बताई ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਓ ਤਿਸ ਨਿਮ ਲਾਗਿਓ ਪਾਈ ਜੀਓ ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਖਜੋਤਾ ਜੀਓ ਹੋਏ ਬੈਰਾਗੀ ਤੀਰਥ ਨਵੰਤਾ ਜੀਓ ਗੀਤ ਨਾਦ ਕੀਰਤਨ ਗਵੰਤਾ ਜੀਓ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਤਿਆਈ ਜੀਓ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਜੀਓ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਲੱਗ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰੇ ਜੀਓ ਪਰਮ ਪਾਉ ਕਾਟ ਕੀਏ ਨਰਵੈਰੇ ਜੀਓ ਗੁਰਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਜੀਓ ਜਿਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜੀਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਇਆ ਸੁਸੋਭਾ ਵੰਤਾ ਜੀਓ ਜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਤਿਸ ਸਭ ਸੁਕਰਨੀ ਜੀਓ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਜੀਓ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਝ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਾ ਸਾ ਚਿਤਾਰੇ ਜੀਓ ਸੰਤ ਦਿਉ ਸੰਦੇਸਾ ਪੈ ਚਰਨਾਰੇ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਤ ਬਿਦ ਤਰਿਆ ਜੀਓ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰ ਆਨੰਦਾ ਜੀਓ ਵਣ ਤਿਨ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਸੁਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਜੀਓ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਇਹ ਮਨ ਬਖਸੰਦਾ ਜੀਓ ਪੇਕ ਦਰਸ਼ਨੇ ਸੁਖ ਲਹੀਆ ਜੀਓ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਜੀਓ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਦੇਵਾ ਜੀਓ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇਵਾ ਜੀਓ ਬਿਨਿਉ ਠਾਕਰ ਪੈ ਕਹੀ ਆ ਜੀਓ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਜੀਓ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਸਭ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰਿਆ ਜੀਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਪ ਤਰਿਆ ਜੀਓ ਇਹ ਅਜਰ ਨਾਨਕੇ ਸੁਖ ਸਹੀ ਆ ਜੀਓ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਏ ਜੀਓ ਪੀ ਵਾਰੇ ਜੀਓ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਜੀਓ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਜੀਓ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਜੀਵੇ ਭਾਈ ਜੀਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਪਾਈ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਓ ਇਹ ਨਿਦਾਨ ਜਪੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਓ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜੀਓ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਟਾਇਆ ਜੀਓ ਆਠ ਪੈਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜੀਓ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਰੇ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਭਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਜੀਓ ਹਰ ਅਸ ਹਰ ਤਨ ਰਾਸ ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ ਜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਸਦ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀਓ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਏਕੇ ਓਂਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਨ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਨ ਜੋਰ ਤੁਮਾਰੇ ਸੁਖ ਵਸਾਂ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੋ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਆ ਕਦ ਹੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਲੱਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੜਿਆ ਦੇ ਬੁਜਾਰਤ ਸਾਰ ਤਾਂ ਸੇ ਅੱਖੀ ਡਿਠੜਿਆ ਕੋਈ ਜੋ ਮੂਰਖ ਲੋਭਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂ ਚਹੂੰ ਕਿਆ ਗਣੀ ਸਭ ਇਕੱਤ ਸਾਤ ਮੁੱਠੀ ਇੱਕ ਅਧ ਨਾਏ ਰਸੇੜਾ ਕਾ ਵਿਰਲਾ ਜਾਏ ਬੂਠੀ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋਹਦੇ ਨੰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਬਲ ਜਾਤ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਝ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਠ ਪੈਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਹੋ ਜਿਤ ਕੱਟ ਵਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸਹਾਵਾ ਥਾਉ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੀ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸੇਵਾ ਸੂਰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਪਿਆ ਰਾਧ ਓਰ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਣਾ ਮ੍ਰਿਠਾ ਕਰੇ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆਂ ਨੱਠੇ ਸੁਖ ਸੰਤਾਪ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਆਪ ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੀ ਗੁਰ ਤਿੱਠੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ਰਹੋ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰ ਸੁਣ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਪਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਫਲਾਂ ਸਭ ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਗੁਣ ਜਿਸ ਮਾਹੇ ਕਿਉਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਐ ਪਉ ਜਲ ਪਾਈ ਐ ਪਾਰ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਾਸ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ਰਹੋ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸਭ ਫੀਕਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਕਰੇ ਫਿਟਸੂ ਜੀਵਨ ਸੋਏ अंचल गै कै साधका तरना ए संसारे पार ब्रह्मा राधिया उदरे सब परिवार साजन बंध समतर सो हरे नाम हिरदे दे औगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थे हो करे हर के चरण निधान नानक जाचे दर तेरे प्रभ तुदनो मांगे दान एक ओंकारी सतगुरु प्रसाद राग गौड़ी महला नवा साधु मन का मान त्याग्यो काम क्रोध संग दर्शन की ताते एन सुभाग्यो रहो दुख सुख दोनों सम कर जाने और माने अपमाना हरक सोग ते रहे अतीता तिन जग तत पछाना उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पन निर्वाणा जन नानक केल कठन है किन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिन से एक अस्तिर माने अचरज लिखियो ना जाई रहो काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सपना रहनाई जो दिसे सो सगल बिनासे ज्यो बहादर की शाही जन नानक जग जान्यो मिथ्या रेहो नाराम सरनाई गौड़ी महला नवा प्राणी को हर जस मन नहीं आवी एन से मगन रहे माया मैं कहो कैसे गुण गावे रहो पूत मीत माया ममता सो एह बिदे आप बंधावे मिर्ग तृष्णा जो झूठ एह जग देखतास उठतावे पुगते मुगत का कारण स्वामी मूर्ताहे बिसरावे जन नानक कोट कोटन मैं को भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवा साधु ए मन गह न जाई चंचल तिशना संग बसत है जा ते थिर न रहाई रहो कठन क्रोध कट ही के पीतर जय सुध सब बिसराई रतन त्याग ज्ञान सब को हिर लीना ता स्यो किश न बसाई जोगे जतन करत सब हारी गुणी रहे गुण गाई जन नानक हर पई दयाला तू सब बिद बने आई गौड़ी महला नौवा साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म मोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहो पतित पनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो गज गोत्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभिमान मोह माया फुन भजन राम चित लावो नानक कैत मुक्त पंथे गुरमुख होए तुम पावो गौड़ी महला नावा कौ माई पुलियो मन समझावे वेद प्राण साध मग सुनकारे निमख न हर गुण गावे रहो दुर्लभ दे पाई मानस की बिरथा जन्म सरावे माया मोह महा संकट मन ता स्यो रुच पजावे अंतर बार सदा संग प्रभुता स्यो नेहो न लावे नानक मुक्त ताही तुम मानो जे कट राम समावे गौड़ी महला नावा साधु राम शरण बिश्रामा वेद प्राण पढ़े को एव गुण सिमरे हर को नामा रहो लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरक सोग पर से जय नाइन सो मूर्त है देवा सुरग नरक मित्र बिखे सब त्यो कंचन और पैसा उस्तत निंदा ए समझा के लोभ मोह फुन तैसा दुख सुख ए बांधे जय नाहिन तै तुम जान्यो ज्ञानी नानक मुक्त ताही तुम मान्यो जे बिद को जो प्राणी गौड़ी महला नावा मन रे कहा पयो रे पयोता ब्योरा एन से औद कटे नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा रहो तांते तन तै अपनो कर मान्यो और सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछु तेरो रे नाहिन देख सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख नलीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सराणी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावी और सगल जग माया मोहे निरपे पद
1: पावे ताते एन सुभागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना हरक सोग ते रहे तीता तेन जग तत पछाना ਔਸਤ ਨਿੰਦਾ ਦੂ ਤਿਆਗ ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਉ ਖੇਲ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਨ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ।